ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउण के सही रा जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हन हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो ब्रैम्पटन विच जे तुसी लग रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलते ने फ्रेश वेजिटेबल स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो bramptoncashandcarry2023@gmail.com ते स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसलिए तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच ते डिनर सारा कुछ है स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी आज ही कॉल करो 905-450-3333 एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton.

0: क्या बात है जी, 5480 हेलो।
1: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, की हाल है?
0: वधिया सर।
1: सर एक नंबर लेना थोड़ा, फेवर तो करो, विंडोज बनांदे आगे उन्हां दी ऐड आंदी सी अपने इत्थे।
0: विंडो वाले दा नंबर लिख लो जी।
1: हाँ जी
0: 647।
1: हाँ जी
0: 926।
1: हाँ जी
0: 0047।
1: थैंक यू वेरी मच सर। एक इत्थे
0: जिथे तुसी कहोगे भाजी पहुंचदे कर देंगे।
1: थैंक यू वेरी मच सर।
0: नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंड कोई भी नंबर लेने होंदे आ जी सदके, मोस्ट वेलकम एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम। एक तां साडा इंस्टाग्राम पेज है पंजाबी लहरां, उत्ते मैसेज कर दिया करो जे कोई नंबर चाहिए, या सानू तुसी आराम नाल फोन घुमा लिया करो ते असी बिल्कुल थोड़े लिए हाजिर है। ओके, अपने ना व्यामा ते बहुत बार खाना पीना चलो वेस्ट होंदा। एक बंदा वो किसी व्याह ते गया ते वो ना नाल कंटेनर लै गया, कंटेनर लै गया ते उन्हें चलो जी कंटेनर दे विच खाना सीगा पाके घरे लै गया ते बड़े लोकां ने उस चीज नू कितना किते क्रिटिसाइज कीता कि यार तू व्याह ते आया ते तू खाना लैके जा रहा घरे की चंगा लगता है? जिन्ना खाना उत्थे खा इहदा मतलब इह थोड़ा भी तैनू किसी ने सद लिया ते तू डब्बा भर के या कंटेनर भर के घरे लैके जा। कई लोग फिर भी चलो कहिंदे यार फिर की हो गया, जे जिहदा जिहड़ी फैमिली दा विआह सी उहनां ने नहीं माइंड कीता तां फिर थोनू की है, नाले खाना वेस्ट हुंदा। वेस्ट होण तों वधिया कि तुसी चलो एटलीस्ट खाना जिहड़ा वो डब्बियां च पा लो नाल लै जो, फिर की हो गया। सो थोड़ा की ख्याल है, इंज खाना डब्बे च पा के घरे लैके जाना, डज इट लुक बैड या थोनू कोई इस चीज नाल कोई गलत नहीं लगता? नंबर है अपना 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 अपना नंबर है 905-673-3337। कॉल कर रहे हो होल्ड ते रहो, थोड़ी कॉल ऑटोमैटिक होल्ड ते पाई जाऊगी ते वापस आके थोड़ी कॉल्स लेने हैं। नंबर है 905-673-3337। देखते हैं जे कोई थोड़े ब्याह ते आके इंज करे तुसी माइंड करोगे? जे थोनू किसी ने सद्या तुसी कदे ऐ कीता नाल कंटेनर लै के भी चलो जी साढ़े अगले हफ्ते का लंच पैक हो जूगा, डिनर पैक हो जूगा, थोड़ी कुछ कॉल्स मैं जरूर लेना चाहवांगा। विल बी बैक।

0: ट्रक कारा लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहिंदियां की करां
1: मैं सुनिया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पोंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
3: इत्थे टी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
3: 905-459-5533
1: 905-459-5533 ते
3: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
4: समा देने लई शुक्रिया जी तुहानू ते साडे सारे लिसनर्स नूं प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्ते ते आदाब मॉर्गेज रिलेटेड कोई भी इनक्वायरी अपने लिसनर दी कॉल कर सकदे ने मैनू रशमीत कौर नूं 6475394499 जां गूगल कर सकदे ने रशमीत कौर मॉर्गेज ब्रोकर गलबात करांगे जी अज डेट कंसोलिडेशन बारे डेट मतलब जेड़ा साडा कर्जा उन्नू कंसोलिडेट करना कट्ठा करना सो काफी बार की हुंदा है कि क्लाइंट्स ने वेरियस सोर्सेस तो पैसा चुकिया हुंदा है अपने क्रेडिट कार्ड्स हो गए लाइन ऑफ क्रेडिट हो गई जां होर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ते लोन हैगे ने उसदे नाल नाल कार लोन है ट्रक दी लीज हैगी है सो काफी बार वेख्या जांदा है कि असीं मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हुंदे आ मिनिमम पेमेंट मतलब सिर्फ ब्याज ही जा रहा हैगा साडा प्रिंसिपल जेड़ा एज इट इज पे है सो दसना चाहांगी अपने लिसनर्स नूं कि जे तुहाडे कोल घर है घर विच एक्विटी है ते तीन तरीकियां नाल नंबर एक रीफाइनेंस करके नंबर दो सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट नंबर तीन प्राइवेट मॉर्गेज जां प्राइवेट लाइन ऑफ क्रेडिट दे नाल भी असीं सारे जेड़े कर्जे हैं कट्ठे करके अपने घर दे अगेंस्ट पा सकदे हां जिस नाल साडी पेमेंट जेड़ियां हैगियां काफी घट जांदियां हैगियां ने इस दे नाल नाल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जांदा हैगा कि तुसीं जेड़ा प्रिंसिपल दे वल भी पैसे पाने शुरू कर दिंदे हैगे हो हमेशा एम्फसाइज करदी हां हर क्लाइंट दी सिचुएशन जेड़ी है वक्री हुंदी है ऑलवेज कॉल करो ए वेखण वास्ते कि तुहाडे वास्ते की ऑप्शंस अवेलेबल ने ते जिदा असीं अकाल मॉर्गेजेस ते हमेशा कहने आ जे असीं इक वारी तुहाडी फाइल रिव्यू करके हां कहती ते असीं हमेशा अपने वादे ते पूरा उतरांगे बहुती जानकारी लई डेट कंसोलिडेशन बारे जां होर किसे भी फाइनेंसिंग ऑप्शंस बारे कॉल कर सकदे हो मैनूं रशमीत कौर नूं फ्रॉम अकाल मॉर्गेजेस 6475394499 647-549-4499 6475394499 धन्यवाद।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: छह फुट दो इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
1: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
2: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स 9054512600 9054526200।
3: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी, ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हां ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए, सर्विस भी टॉप नॉच सी, टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी, करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी ता हुन हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
4: महंगाई के इस दौर में मैं पूछता हूँ भाई बहनों, क्या आपको $10 फॉर टू कोई दे पाएगा कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, खाना चाहोगे कि नहीं?
5: क्यों नहीं खाना चाहेंगे? तवा किचन दे रहा है ना अमृतसरी कुल्चा 2410, बिरयानी 2410, न्यूट्री कुल्चा 2410।
6: अरे बस बस, फोन नंबर और एड्रेस तो दो।
2: तवा किचन एट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-450-2600 9054512600।
6: इतना ही नहीं, ग्रैंड अपनी स्पेशल और भी आइटम है $10 फॉर टू।
7: भैन जी, तीजा भी आया कैनेडा दे विच, ना ही इंडिया वर्गा टेस्ट, ना ही इंडिया वर्गी क्वांटिटी। छोटिया छोटिया प्लेटा फड़ा देंदे ने, जो दूजी बारी खाना लेन जाओ ते बफे खत्म हो जांदा है।
8: मैनू पता है क्यों, मैंने तवा किचन दी केटरिंग खादी सी। सच्ची कहो तो फूड इन्ना टेस्टी, अनलिमिटेड फूड, इन्ना फूड के मैं खांदे खांदे थक गई पर फूड नहीं मुक्या।
1: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बवेदा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
9: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नु, ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
10: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी। सच मनो स्वाद ही आ गया, गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू। इना दी सर्विस एक्सीलेंट है, ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
1: 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बवेदा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
9: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नू, ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
11: हां जी, हसे गाल जी, अपनी कंपनी मिसिस आगा, आपां नू केटरिंग दी लोड़ सीगी, ते आपां तवा किचन नाल कॉन्टैक्ट कीता। आपां नू 50 बंदे दी केटरिंग करवाई सी, ते आपणे करीबन 55 तों 60 बंदे सीगे, फिर भी केटरिंग उहनां कोल मतलब बहुत ज्यादा सी, सानू कोई थोड़ नहीं आई। असी रिकमेंड करदे आ तुसी भी कैटरिंग कराओ तवा किचन तो। थैंक यू सो मच।
1: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बवेदा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
8: सिमरन बड़ी पतली हो गई है, कुछ खांदी खुंदी नहीं?
7: ले दस, काम तो जा, मैं घरे रोटियां बनावा।
8: तो टिफिन लवा ला,
7: घर दा स्वाद कित्थों मिलदा वारो।
8: मतलब तू तवा किचन दा फूड नहीं टेस्ट कीता? तवा किचन बिल्कुल घर वर्गा स्वाद, कस्टमाइज्ड टिफिन पैकेजेस अवेलेबल, फूड क्वालिटी ते क्वांटिटी एकदम लाजवाब।
1: 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बवेदा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
12: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहुंदे हो? कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो? वेयर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस, 28 एकर लैंड विद 2 रोड फ्रंटेजेस, डबल कार गैराज, ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप। यही नहीं, 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते। फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम, फेयर डी रियल्टी, ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर, एंड 905-671-2000 905।

मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत ना कोई, करने हारा करदा आपे, जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही प्यारे जे शो रेडियो आवाज़ 'च। ते तुहाडा ते साडा साथ बनिया रहेगा पूरे सवेरे 10 बजे तक, ते तुसी सुनदे रहो तुहाडा प्यारा शो रेडियो आवाज़।

0: हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन,
1: स्टार इमिग्रेशन,
0: और 905-457-3131
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विस्टर वीजा ते कनाडा लाके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विस्टर इंश्योरेंस प्लान लाके उन्हें प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे। साड़े अप्रूवल फास्ट ने, कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है, ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा, ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते। तुसी मैनू कॉल करो, एदे लई नंबर है 416-524-3535, 416-524-3535, विदेश आपरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस।
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो

0: पूरे हिंदुस्तान दे च नहीं पूरे वर्ल्ड दे विच प्रसिद्धि खट्टी। हंस राज हंस नहीं उस वेले डरिया कि उस दे भी दो मुंडे आ, कहिंदे हंस राज हंस नहीं डरिया कि उहदा भी परिवार है, उहदी भी वाइफ है, ते ये गीत गा के और जे तां कोई बहाने लाउणे आ, हाँ जी असीं बिजी आ, असीं उत्थे जाणा, साडे घर दा काम आ, ये काम आ, ते बिल्कुल आउण दी लोड़ नहीं, घरे बैठो। जे तुहानूं लगदा कि यार हरजीत सिंह इत्थे सानू महीना हो गया दुहाई पा रहे टिकटां लैण लई कि आपां इह शो नूं देखणा, हंस राज हंस दा मान वधाउणा, हंस राज हंस नूं इज्जत देनी आ, जिन्हें साडी कौम दे वास्ते इह गीत 1984 च गा के जिथे साडी कौम दे नाल स्टैंड कीता। हंस राज हंस जी तुहाडा शो सोल्ड आउट जाणा, साडी जिन्नी भी कम्युनिटी सुन रही है आ दो दो चार चार टिकटां लै के तां उदां ही इन्हां ने वीकेंड दा खाली कर देना काम। ते हंस भाजी कल प्रोग्राम सुन रहे सी, अज मैनूं पता नहीं सुन रहे, पर कई है ना असीं बहाने ला दिंदे आ। मैनूं बहुत बंदे इदां दे जानदे आ, कईआं दे मैनूं फोन भी आया कहिंदे हरजीत जी असीं ना शो ते आना सी यार, साडे घर आ ना उस दिन कोई फैमिली आ रही है। मैं नाले हसां ते नाले सरप्राइज, मैं कहा जी घर च कोई विआह आ? कहिंदे नहीं विआह नहीं, सिर्फ घर च कोई फैमिली गैट टूगैदर हो रही है। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं? कहिंदा हरजीत जी बिल्कुल तुसीं सही गल कही है, जो तो मैं गल की ना थोड़ी जी धीआं दे गीत दी, तो कहिंदा हरजीत जी तुसीं मेरा ना दिमाग बिल्कुल सैट करता, और राइट वे बंदे ने 7 टिकटां मेरे को लईआं राइट वे। कहिंदा हरजीत जी मैनूं 7 टिकटां दिओ तुसीं, और असीं अपनी जिहड़ी फैमिली है उन्हां नूं असीं अगले हफ्ते बुला लाँगे घर, फ्राइडे ना शो अपना, कहिंदे शनिवार बुला लाँगे उन्हां नूं असीं। ते इदां भी परिवार कर रहे जिन्हां ने साथ देना, जिन्हां ने बहाने लाने आ, बई बाई जी असी तो उत्थे जी, असी घरे नहीं, असी उत्थां दे घरे जाना जी, उन्हां दे घरे जाना, वह बहानेबाजी हुंदी है। जे एक गाने सुन के जे वह गल नूं दिमाग ना रखिए ना आपां, ते फिर वह चीज़ां नहीं हुंदियां। पर जे किसे दा साथ देवे ते फिर बंदे नूं कहिंदे आ कि प्यार दे विच मरना भी चाहीदा। कहिंदे आ ना विरात खाली इश्क नहीं है जान भी है, जान भी है ते जान दिल भी, दिल नहीं ते जान भी, कहड़ा गाना सी रात खाली दिल नहीं है जान भी है मंगदा, ते इश्क दी गली विचों फिर कोई कोई लंघदा। जे तां पंजाबी विरसा दे नाल तुहाडा प्यार है, सिंह हरजीत दे नाल प्यार है, जे हंस राज हंस दे नाल प्यार है, टिकटां ticketmaster.ca तों लै लो जल्दी। ते मैनूं ही पता लग गया यार तुसीं मेरा भी साथ दिंदे आ, कि गल्लां लैणी तुसीं है, गल्लां वाले बंदे नहीं हुंदे जिहड़े बंदे नाल खड़न वेले सर आ गए वह फिर सरदारी हुंदी है। हैलो
1: हेलो,
0: हाँ जी सर,
1: नवी जी
0: जी
1: सर, राज हंस राज दी टिकटां असीं बाय करके पहले आया ऑलरेडी।
0: अच्छा लै लिया टिकट,
1: सुनिया सी।
0: अच्छा जी थैंक यू सर।
1: की गाया इन्हां ने, विदेश पराया जाके वसाया आदुक सुख खोल वे।
0: तुसी टिकटां लै लियां भाईआं, तुसी जिहड़ी साडी आवाम होर सुन रही है, साडियां फैमिली सुन रही है, उन्हां नूं तुसी अपने वल्लों की मैसेज देना चाहोगे?
1: मैं कहना वा इस तरह के संकार जिहड़े ने ना वह करोड़ों साल च ही पैदा होंदे ने,
0: पुत हर दे घर हैगे आ। जे हंस राज हंस ने गीत गा के गलती कीती है ते बिलकुल आउण दी लोड़ नहीं करे।

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत की थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे.
2: मैं आ जा तो मैं लाल नचिए नचिए बाहां च बाहां पा. मैं आ जा तो मैं लाल नचिए.
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 6474481000.

0: हेलो
1: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
0: हाँ जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
1: इंडिया दिया टिकटा चाहिदिया सी।
0: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दिया टिकटा ले लो, बस दसो की टिकटा कदों दिया चाहिदिया ने। ते हाँ, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
1: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग ले आज ही कॉल करो 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।

0: इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
0: दोस्तो, देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश परदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नू क्लिक करो, ओथे तुसी सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
4: देयर आर सिंगर्स, देयर आर परफॉर्मर्स, and then there are legends. A voice that has defined generations, the one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Live and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit ticketmaster.ca.
0: Hello, AM 530 to tusi sun rahe ho apna harman pyara radio program Desh Pradesh Prime Time Radio. Pichle 30 varyan to tuhade ang sang Desh Pradesh hun apne sham de program de vich vadha kar chuka. Pehla tu sunde si Monday to Friday 4 to 6, lekin hun tu sunde ho 3 to 6 shami, yani ke Desh Pradesh शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसीं दुपहरे सिरड़े 1 तों लैके शाम दे 4 बजे तक देश परदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश परदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381, 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो सब डे जबीक तहाडे अंग संग। चलो

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada day study visa, express entry, Canadian express entry, spousal file, parents PR, super visa, nanny, work permit, farmer, investor, ya self-employed di file. Gal ki immigration di har problem da solution lain lai, community de jaane pehchane ate tajrabe kar immigration consultant Gary Virk nu milo.
1: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi vi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha. CIC immigration, hune hi call karo 416
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 पे
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮਾਦਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮ ਬੰਸਕਾਰ ਡਾਂਸ
6: ਟੋਰਾਂਟੋ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੀਅਲਟਰ ਰਵ ਸਿੰਘ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਏ ਟੂ ਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ

0: हेलो एएम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात करने लिए हुणे कॉल करो 905 564 64 44 905 564 64

0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: सस्ती ग्रोसरी और हरियां ताजियां सब्जियां लई शहर दे विच इको एक नाम सत शिखामा तो इंडियन फ्रूट लैंड ते नाल ही है नदी तंदूरी ग्रिल बाहरले पासे जिथो तुहानू बणिया बणिया हर फूड मिलदा है। नाल दी नाल रॉ मीट भी और मैरिनेट कीता मीट भी तुसीं लिया सकदे हो। अपने नेड़ली लोकेशन ते आओ 45 Dusk Drive 15 Fender Way Brampton 9985 McQueen Drive Brampton 1465 Mayfield Road Brampton 33 Farley Drive Guelph और 600 हैस्पिटल रोड कैम्ब्रिज नमी खुनी ब्रांच 25 सेंट्रलवुड पार्कवे कनेडी दे सेंट्रलवुड पार्कवे दे नेड़े आओ। हरियां ताजियां सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड ते।
4: करो कदों तक इस किराए दे छोटे जे घर च रहवांगे।
1: ओए बस मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु कॉल करन तक।
0: तुसी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, इक्विटी टेक आउट, प्राइवेट मॉर्गेज या फिर
5: सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट, इक्विपमेंट लोन या रेंट टू ओन बारे सोच रहे हो तो मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु जरूर मिलो। नरदेव सिद्धू जे फड़न के तुहाडी बां तो मॉर्गेज तो नहीं हो सकती ना।
0: या कॉल करो 647-294-5503 647-294-5503
5: वाला नाम नरदेव सिद्धू लाइसेंस नंबर 10530 nardevsiddhu.com।
6: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
3: टुडे विच लाइव गलबात करने लई हुणे कॉल करो 905-564-6444
6: 905-564-6444।
3: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो।